ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.

खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज तई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569 03-00-33-8569।

से फल तोड़ो या खेती से गल्ला काट के साफ कर लो, तो फिर क्या करो, सारे का सारा खुद ही ना खा जाओ या उसका पैसा खुद ही ना ले जाओ, बल्कि उसमें से अल्लाह का हक भी अदा करो। यानी अल्लाह के हक से मुराद ये नहीं कि वो अल्लाह ताला को पेश किया जाएगा या अल्लाह ताला उसमें से खाएंगे, उसको तो इन चीजों की जरूरत नहीं। फिर इससे मुराद क्या है, अल्लाह की मखलूक जिन्हें अल्लाह अपने नाम पर देने को कहता है और उसे अपना हक करार देता है। क्योंकि दरअसल जब इंसान अल्लाह के रास्ते में दे रहा होता है तो वो किसी इंसान पर एहसान नहीं करता, वो दरअसल अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा होता है और उसी से उस एहसान की जजा चाहता है। यानी तुम बंदों को नहीं देते, दरअसल मुझको देते हो, इसका बदला बंदों से ना मांगो, इसका बदला देने वाला मैं हूं। अब बात यह है कि हक्कहू से यहां दो माने मुराद लिए गए हैं। एक तो आम सदका जो दरख्त से फल उतारने पर किया जाए, और दूसरा माना उश्र जो जमीन की जकात कहलाती है। उश्र शीन साकिन है, उश्र। मसलन किसी के घर में आम का दरख्त है, अब ये तो नहीं कि वो कुछ का अचार बना ले, कुछ की चटनी बना ले, कुछ का शरबत बना ले, कुछ फ्रीज करके रख ले और किसी दूसरे को कुछ भी ना पूछे, नहीं, बल्कि जब भी दरख्त का फल उतरे उसमें दूसरे को भी शरीक करे, अजीजों दोस्तों रिश्तेदारों जरूरतमंदों को ऐसे मौके पर पूछना बहुत जरूरी है। यानी आम सदका मुराद है, और एक इससे मुराद ज़कात-ए- ज़मीन है जिससे मुराद उश्र है, और वो फिर एक खास हद पर जाकर आयद होता है, वो तो एक खास मकदार में पैदावार होगी तो ही उसमें से निकाला जाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि ये सूरत जो है ये मक्की सूरत है, और मक्का में ज़कात का हुक्म तो आ चुका था लेकिन ज़कात का कानून अभी नहीं आया था, उसकी तकसीम का तरीका और उसकी जो परसेंटेज है वो अभी नहीं बताई गई थी। इसलिए अगर इसको आम माने में भी ले लिया जाए तो ठीक है कि जब जमीन की फसल आए और कटाई हो या फल पैदावार आए तो उसमें से सदका भी किया जाए। और बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि ये मदनी आयते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया था ना, ये सूरत सारी की सारी मक्की है और एक ही दफा में नाजिल हुई सिवाय चंद आयतों के जो मदनी हैं। तो बाज़ मुफस्सरीन ने इस आयत को मदनी करार दिया और उस सूरत में उन्होंने कहा कि इससे मुराद उश्र ही है। अब यह है कि उश्र कैसे अदा होता है, इसमें पहली बात यह है कि ज़रई ज़कात में उश्र को अब मैं दूसरा नाम दे रही हूं, ज़रई ज़कात। एक होती है ना माल की ज़कात और यहां क्या है खेत की ज़कात। तो ज़रई ज़कात में साल गुजरने की शर्त नहीं होती, बल्कि कब देनी होती है, जब उसकी कटाई होती। हो सकता है साल में एक फसल आए या दो आए या दो साल में एक आए, जब भी आए। आसान हिसाब है कि जब भी फसल काटी जाए तो हक दिया जाए। दूसरी बात यह कि खेती अगर चश्मे या बारानी पानी से सैराब हो तो उसमें उश्र या दसवां हिस्सा ज़कात होती, और अगर पानी मसनूई तरीके से दिया जाए जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, कुआं है, और उस पर मेहनत भी हो और खर्च भी हो तो फिर बीसवां हिस्सा होगी। देखे ना हमारे दीन में कितनी रियायत है, अगर खुद ब खुद सैराबी हो रही है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा, तो फिर आपको दसवां हिस्सा निकालना है। और अगर खुद आप पानी लगा रहे हैं, मसलन आपने ट्यूबवेल लगाया, बिजली का भी बिल आपको देना है, नहर का पानी आ रहा है तो उस पर पानी का कुछ टैक्स देते हैं आप। इसी तरह अगर कुआं हो और आप किसी गाय बैल से खिंचवा रहे हैं उसका पानी, तो उसमें भी आपका जानवर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए उस पर ज़कात भी बीसवां हिस्सा होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गंदम जौ मुनक्का, मुनक्का क्या होता है, खुश्क अंगूर और खजूर से ज़कात ली जाती थी, लेकिन वहां पर दूसरी खेती पैदा नहीं होती थी, मसलन गंदम नहीं वहां पैदा होती थी। अब ये कि जिन मुल्कों में गंदम पैदा हो तो फिर उस पर भी होगी, कोई ये नहीं कह सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गंदम की ज़कात नहीं दी इसलिए हम भी नहीं देंगे। फिर इसी तरह गल्ला की पैदावार जो है, मसलन गंदम उगी है और उसकी पैदावार जो है पांच वसक वाओ सीन काफ, जो किलोग्राम में बनती है 948 किलोग्राम्स,
948 کلو گرام سے کم ہو تو اس پہ زکات

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

सिंध में पाणी जी शदीद बहरान बावजूद पंजाब तकरारी लिंक केनाल सरी पाणी जी खणत बंद न कई। सिंध हुकूमत जो एहतजाज, सिंध में पाणी जो बहरान ऐं गैर मुनफ़ानी विर्छ ते सीनियर यूनिवर्सिटी शर्जी लीना में उन वफ़ाक़ खां पंजाब जी ज़्यादती ऐं एफ़सा जे फ़ैसलनि जो नोटिस वठण जो मुतालबो कयो। शर्जी लीना में उन चयो त एफ़सा जे फ़ैसलनि सां सिंध सां अण बराबरी वारो वर्ताउ जो तासुर मज़बूत थी रहियो आहे। कंहिं बि सूबे खे ॿिए सूबे जे हिसे ते तरजीह नथी ॾेई सघे। सिंध गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहनि खां 22% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रही आहे। कराची जहिड़े मुआशी मर्कज़ लाइ संगीन खेतरा पैदा थी रहिया आहिनि। गुडू बैराज ते 42 ऐं कोटड़ी बैराज ते 29% पाणी जी खोट रिकॉर्ड थी वई आहे। वफ़ाक सिंध खे जाइज़ मुकमल ऐं जाइज़ सुफ़राम करण लाइ अमली क़दम खणे। सिंध जे ख़ूबसूरत ऐं एशिया जी सभ खां वॾी मंछर ढंड बि सुकी वई। बानसईदाबाद में मंछर बचायो ताज जो ढंड जे बहाली लाइ मंछर बंद ते एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त पाणी घटिजण सबबि मच्छीअ जो नसुल ख़तम थी वियो आहे। मुहाणा बदाली जो शिकार आहिनि। पाणी जी सतह घटिजी 106 RL याने 6 फुट रहिजी वई। 3000 खां वधीक इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रिए पाणी खां महरूम आहिनि। मंछर ढंड में पाणी जी सतह खे बहाल कयो वञे। दाबे जी पंपिंग स्टेशन ते बिजली जी बंदिश सबब कराची खे पाणी जी फरहमी मुअतल। वाटर कार्पोरेशन जे तर्जुमान जो चवणु आहे त दाबे जी ग्रिड जे ट्रांसफार्मर्स में फनी ख़राबी सबब शटडाउन कयो वियो। जबरी शटडाउन सां दाबे जी पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 यूनिट्स बंदि आहिनि। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे पाणी जी फरहमी मुअतल आहे। बिजली मुकमल बहाल थियण जे वक़्त बाबति हतमी ॼाण फराहम नाहे कई वई। नई माली साल जी बजट में इलेक्ट्रिक गाॾियूं ऐं सोलर महांगा थियण जे इम्कान। ज़रियुनि मुजिब IMF पारां बजट में सेल्स टैक्स छूट ख़तम करण जी तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स 0% थियण जो इम्कान आहे। ईंदड़ माली साल में गाॾियुनि जे पोर्ट 40,000 ताईं महदूद करण जी तजवीज़। हाइब्रिड गाॾियुनि ते बि सेल्स टैक्स 8% वधाए 0% ताईं आणे सघिजे थो। सोलर पैनल्स ते बि सेल्स टैक्स 10% खां वधाए 0% करण जी तजवीज़। ईंदड़ माली साल जी PSDP जी मद में 1126 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। GDP वाद जो हदफ 4% रखण जी तजवीज़। ईंदड़ माली साल जी बजट लाइ सालाना प्लान कोआर्डिनेशन कमेटी जो इजलास अॼु थींदो। एहसन इक़बाल जी सदारत में इजलास दौरान तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वई। नेशनल इकॉनॉमिक काउंसिल जो इजलास 3 जून ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि सॾाइण जो इम्कान। FBR टैक्स उगाड़न में 868 अरब रुपियनि जी घटिताई खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। 12,095 अरब रुपियनि जे अदब जे मुक़ाबले में 11,027 अरब रुपया जमा थी सघिया। वफ़ाक़ी गर्व वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां मुलाक़ात। मुल्क में अमन अमान ऐं मजमूई सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खे ईद उल अज़हा जे मौक़े ते कयल सिक्योरिटी इंतिज़ामनि खां आगाह ऐं गिलगित बस्तान में रिथियल चूंडुनि लाइ सिक्योरिटी इंतिज़ामनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। मोहसिन नक़वी चयो त चूंड अमल दौरान अमन अमान बरक़रार रखण लाइ जामिया सिक्योरिटी प्लान जोड़ियो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ मुल्क में अमन इस्तक़ाम जे क़याम लाइ घर वज़ारत सिक्योरिटी फोर्सिस जी कोशिशुनि जी वाकार। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त हुकूमत जमहूरी अमल लाइ हर मुमकिन क़दम ऐं सहकार जारी रखंदी। इसराइली फ़ौज जो लिबनान में अहम जबल ऐं तारीख़ी अल शकीफ़ क़िले ते कब्ज़ो। 26 सालनि खां पोइ ॿीहर इसराइली फ़ौज लिबनान में घिरी वई। लिबनान जे 2,000 चौरस किलोमीटर इलाइक़े ते कब्ज़ो करे वरितो। लिबनान जी मीडिया जो चवणु आहे त नतीआ जा वधीक इलाइक़ा ख़ाली करण लाइ बमबारी कई वई। हमलनि में रहायशी इमारतुनि खे निशानो पढ़ण सबबि घरनि में निंड सुतल केतिरा ई माण्हू शहीद। लिबनानी वज़ीर आज़म पारां इसराइली कब्ज़े जी मज़म्मत

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyan Jo Show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Apna Sheher Apna Ghar Mehrabpur aur Mehrabpur ki Awaaz GAFM 94.

0: iron store Halani, wholesale depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Raptilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9-8951
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अस्पताल में तकिल पुलिस मुझे बाकी पुराने तकरार था पेश आया है। मकतूल धुदे बिरादरी जे कजड़े के मारने जो इल्जाम हो। मियां साहब जो बखरानी बिरादरी जी बिंदुरन में कार हित करार था छेड़ो फायरिंग में बजना मार जी वया औरत जख्मी। मुख्तलिफ थाने की पुलिस पहुंची दिन में फायरिंग बंद कराए। बड़ी लाश तहवील में वही जख्मी औरत के इलाज लाए चिकारपुर सिविल अस्पताल में तकी कर। घोटके वेझो गोठ लीमा घोटो भरसा फायरिंग गोठानो नादिर अली सुंदरानी कतल। मकतूल के वारसन जो घोटा धुते गोठाने के मारने जो इल्जाम जवाबदारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस मूजिब कुछ माण्हुनि खे शक जे बुनियाद ते हिरासत में वरितो आहे। वधीक जांच जारी आहे। फैज़गंज भर पासे में गैस्ट्रो वबाई शिकिल इख़्तियार करण लॻी। 30 खां वधीक मर्द ऐं औरतूं ॿार गैस्ट्रो में मुबतला। केतिरनि जी हालत गण थिए जोगी। ऐं ठोल भर सां गुलशेर में कन्नाणी बिरादरी जे बिंदुरनि में पैसनि जी देती लेती तां छेड़ो 8 ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद। पाकिस्तान में सबसे
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385769
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
6: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
8: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 03013992836
11: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

और बाजारों छोटी मोटी कारों मेरे बरसारों या करोड़ हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगमी जी आया नू सद बिस्मिल्लाह बोंजोर साओ नी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सारी बातें करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना और इस गाने के साथ चलेंगे आगे और आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

आगे जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि होगा, मुझे नहीं पता कि अभी तक हमारी जो पोस्ट है वो लाइव गई है पेज के ऊपर या नहीं. सो अगर

मुझे पता चलता है कि लाइव चली जाती है तो आपको मैं पेज भी बता देती हूँ. और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. एक नहीं, दो नहीं, मेरे ख्याल से 2 से 3 सेगमेंट्स में जो कि होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. और वो जो सेगमेंट्स होंगे ना, वो होंगे सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट होगा अब से ठीक ठीक ब्रेक के बाद, दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ. सुर लगाओ गाना सुनाओ में होगा ये कि जो लोग कॉल पे आएंगे वो गाना सुनाएंगे और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. ठीक है जी, तो ये होगा. और मेक श्योर कि जो कॉलर आए और वो गाना जो सुनाए ना, वो रोने धोने वाला या सैड सॉन्ग नहीं होना चाहिए. और गाना इतना गाना चाहिए कि आपके गाने के बाद वो गाना चल भी सके. ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा गाना सुनाने बैठ जाए मुझे. ठीक है, पूरा गाना तो मैं वैसे भी प्रोग्राम में नहीं चलाती वो मैं आपसे कैसे सुनूंगी. ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ख्याल से गाना सुनाइएगा. अच्छा, इसके अलावा जो हमारा सेगमेंट होता है 12 बजे के बाद वाला, दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर जो कि आप लोग बोल सकते हैं. और जब आप लोग बोलेंगे ना टंग ट्विस्टर, तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा उस सेगमेंट को. और जब वो विन कर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा बोलता है. ठीक है जी, तो ये होगा. और एक और गाना प्ले कर चुकी हूँ, द वन एंड ओनली आसिम अज़हर की आवाज में. इस गाने को सुनते सुनते हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने में. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359212।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: आए। अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं?
1: फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं?
0: जी जी
1: फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन सकते, पहले भी सुनते मतलब पहले से ही सुनते आ रहे हैं आप?
0: नहीं नहीं ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं।
1: अच्छा ये वाला फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, चलें जबरदस्त। कोई गाना है, गाना सुनाएंगे?
0: जी
1: सुना दे फिर।
0: सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको हम दे सकेंगे, फिर भी है वादा ये मेरा तू जो करे प्यार हमको, छोटा सा घर एक मेरा तुझको हम वो दे सकेंगे।
1: आपने तो पूरा गाना ही बिगाड़ दिया। चले ये गाना प्ले कर रही हूँ, किसको डेडिकेट करेंगे?
0: बस सबको जो सुनने वाले सबको डेडिकेट।
1: ओके जी ये रहा।

0: बनूंगा।
1: ओके आजकल वैसे अपोजिट चल रहा है
0: ना कोई
1: यहाँ पे
0: जाने।
1: मतलब फीमेल की लाइन होनी चाहिए थी कि तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगी। खैर नेक्स्ट कॉलर लेंगे, ये थोड़ा सा गाना सुन ले। चलो कॉलर को वेट नहीं करा दे, कॉलर लेते हैं। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: सरदर्द बात कर रही हूँ।
1: सरदर्द बात कर रही है, सरदर्द माइक सही करवा लिया फोन का? बड़ी खुली खुली आवाज आ रही है आज तो, खिली खिली खुली खुली खिली खिली। अच्छा सरदर्द वाकई सही करवाया है या खुद ही सही हो गया है? एक बार और फेंका है तो वो दोबारा सही हो गया?
2: नहीं नहीं,
1: ऐसा होता है ना कि जब हमारा घर में टीवी का जो है रिमोट नहीं चल रहा होता, हम उसको मार मार के चलाते हैं और मार मार के मतलब मारने के बाद ना वो पहले से ज्यादा सही चल रहा होता है।
2: हाँ बिल्कुल
1: है ना।
2: हाँ।
1: बस ये जुगाड़ जुगाड़ है पाकिस्तानी अवाम के। खैर आप मुझे बताएं गाना सुनाएंगे कोई?
2: सुना
1: दूं,
2: गाना ही ना
1: बिगाड़ूं,
2: कोशिश करूंगी
1: तो
2: लगा के सुना
1: दूं। ओके पहले मुझे बता दे कौन सा गाना है।
2: दिल लेके अभी क्या गाना?
1: कौन सा?
2: दिल लेके।
1: दिल लेके ओएसटी है कोई?
2: नहीं ओएसटी नहीं
1: है। अच्छा दिल लेके किस सिंगर का है ये?
2: नबील चौकर।
1: चलो ठीक है
2: सुना दूं?
1: हाँ जी सुना दे प्लीज।
2: दिल के मेरा हाल तो पूछा की तेरा के यार को दो गान दीजिए।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ कहना है सरदर्द, किसी को डेडिकेट करना है?
2: थैंक यू।
1: ओके जी थैंक यू। ये रहा गाना।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

अच्छा आज का जो टंग ट्विस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी, ठीक है ये कहना है। जीम से टंग ट्विस्टर होगा आज का। जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी, ठीक है ये कहना है। और एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी, और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे सारे लोग। दैट अगला जो हमारा सेगमेंट है दैट इज बोलो तो माने, उसमें आप लोग ये कह के दिखाएंगे और जो बंदा ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा इस सेगमेंट को, ठीक है। गाना सुनेंगे, सुनते सुनते जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध में बदमनी की बाहे वधीक, अठ इंसानी जानू विरकाया वई। लाड़काणो भरसा औरत बिन पुटन ऐं धीउ समेत कतुल। मियां साहब भरसा कार ऐं तकरार, ॿिनि ॼणनि जूं हयातियूं गिड़का वियो। घोटके भरसा में ॻोठाणो गोलियुनि जो खाध बणिजी वियो। लाड़काणो जे माउटा थाणे जे दमे मुगेरी बिरादरी जी ॿिनि में पुराणी तकरार तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो। औरत ज़रीना ख़ातून संदसि पुट ज़मीर रोशन मुगेरीअ थी सहमा मुगेरी कतुल, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया। पुलिस वटि वाक़ियो पुराणी तकरार तां बेशायो आहे। मक़तूल जो थिए बिरादरी जे हिकु ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो। मियां साहब वेझो वखराणी बिरादरी जी बिंदुनि में कार तकरार तां जहिड़ो फायरिंग में ॿ ॼणा मारिजी विया, औरत ज़ख़्मी। मक़तूल में अब्दुल जब्बार वखराणी ऐं आगा असदुल्ला वखराणी शामिल। औरत मारबी ज़ख़्मी थी पई। घोटके भरिसां ॻोठाणो नादिर सुंदराणी हथियारबंदनि सां क़तल। मक़तूल जे वारसनि जो घोटा धुर ते ॻोठाणी खे मारण जो इल्ज़ाम। कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस पारां कुझु माण्हुनि खे हिरासत में वठण जी दावा।

ईरान हकीकत में मुआदो करना चाहे तो जो अमेरिका असा सा गड रहन सुठो साबित थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवे तो मुखालिफ सुकून से वेहन और पांजो कम कन आखिर में सब कुछ सुठो ही थी इतमें तैयार न ठा सकों।

ईरानी फौज जी अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी फदाई अडे के निशानों बनाने की दावा ईरान के पासदारन इनकलाब चाहे तो ईरान की भेट सिर्फ में टेलीकम्युनिकेशन टावर के हमले के जवाब में अमेरिकी फदाई अडे के निशानों बनाया वो कुवैती फौज चाहे तो मुल्क के दुश्मन के ड्रोन हमलन के नाकाम बनाया वो है।

यूरोपीय यूनियन की नायब सदर कायाकलास पाकिस्तान के दौरे से इस्लामाबाद पहुंची वही पर याफ्त आमद थे पर वजीर इसहाकदार कायाकलास जो आदर मां कयो मुलाकात में बतरफ लागापन वापारी सरकार खेती गए थे गालू कयो कयाकलास वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कई।

नए माली साल जी बजट में 720 अरब रुपए के नव मनसूबन की तजवीज है। सूबे के मुकाबले में वफाकी सरकार वट वसील की घटताई है। वफाकी वजीर हसन इकबाल चाहे तो सूबे की तरक्याती बजट में बेहतरी थी है। वफाकी तरक्याती बजट में घटताई थी है। तरक्याती अमल करने के लिए 10,000 अरब रुपए की घुर्ज है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 553 0359।

0: आयो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिसमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: के ऊपर, ठीक है, FM 88.6
1: PM. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Apna shahar apna ghar Mehrabpur aur Mehrabpur ki awaaz GA FM 94.
0: देखेंगे कि आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कौन ज्यादा सही सही और अच्छा अच्छा कहता है. सो जो ज्यादा सही सही और अच्छा अच्छा कहेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को.

0: KG0200-11-34-88. एक और कॉलर. हेलो. ओ ये क्या हो गया. चलें एक और ट्राई. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं नवीर.
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं. ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है ये वाली भी. वेरी बैड.

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो, कोई है? हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है. 0300011348. एक और कॉलर. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: दिया।
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: मेरे पापा से बात कर रही हूँ, पर आज नहीं पापा से कौन बात कर रही है?
0: तूबा बात कर रही है?
1: या
0: तूबा कैसी है?
1: माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ।
0: जबरदस्त.

0: और मुझे ये बताओ तूबा कि टंग टू से सुनाए, बोलोगी?
1: हाँ सुनाए, आपकी आवाज सुनी आ रही है।
0: अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। ओके जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही थी। एक और कॉलर लेते हैं जी, नेक्स्ट। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन? कोई हेडफोन्स वगैरह लगाए? अब्दुल कदीर, हेडफोन्स लगाए तो प्लीज निकाल दें। हेडफोन्स लगाए तो निकाल दें प्लीज।
2: हेडफोन
0: नहीं लगाए? अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी? ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने कहा था हेडफोन्स निकाल दें, निकाल दें, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है कोई। अच्छा, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन किधर से?
3: रियाज दायो लॉर्ड क्रम से।
0: रियाज दायो, कैसे? ठीक ठाक।
3: लॉर्ड क्रम से रियाज दायो।
0: ठीक है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत सेहत ठीक है?
3: अल्लाह की करम है, आज जो मेरे दोस्त हैं
0: बस दो शामिल करने। ओके जी, आते साथ ही कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे दोस्त के फिर वो इतनी लंबी लिस्ट है। कोई 10-12 लोग हैं। अच्छा, ये ट्रेंड ना थोड़ा सा पुराना हो गया, इसको जरा चेंज करें ना प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई है? क्या हो रहा है ये? आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नेक्स्ट कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से?
3: भाई
0: कैसे? भाई ठीक ठाक है,
3: शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप सुनाओ।
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बताइएगा क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं?
3: जी जी, आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं? भाई
0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाएं, भूलेंगी?
3: जी अबाजी सुनाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
0: मैं बता दूं?
3: जी।
0: अच्छा आपने कहना है कि जावेद ने झूलते झुमकों की झनझनाहट झट से जगा दी।
3: जावेद ने झुमकों से झनझट से जगा दी।

0: आवेद ने झूलते झुमको की झंझनाहट झट से जगा दी।
1: बाजी थोड़ा कंफ्यूज आ रहा है, क्यों रहा है?
0: कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा। जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी।
1: चलो थोड़ी कोशिश करते हैं, मैसेज में आपसे बात करते हैं, मैसेज कर देते हैं।
0: मैसेज पे बात करते
1: जी, मैसेज करते थे आपको।
0: अच्छा मैसेज करते थे, मैं समझी मैसेज पे बात करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बहुत सारे लोगों को टंग ट्विस्टर मुश्किल लग रहा है, लेकिन आज हम चेक करेंगे कि किसने सही सही कहा है, अच्छा अच्छा कहा है, और वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा कि किसने ज्यादा अच्छा कहा है। सो हम ऐसा करते हैं कि मूव करते हैं एक अदद सॉन्ग की तरफ, और मैं प्ले करने जा रही हूँ एक अदद सॉन्ग। दिस सॉन्ग इज बाय कैफी खलील, और ये वाला गाना मैं प्ले कर रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई शो। इसको सुनिए, इंजॉय कीजिए और मेरा साथ दीजिए। स्टे ट्यून्ड।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100

0: Gigi, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है. और आज का टंग ट्विस्टर और नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे 03000113488 के ऊपर. चेक करेंगे कौन और कहाँ से हमारे लाइन पे मौजूद होंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: हेलो
0: हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहे हैं.
0: सागर भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: ईद मुबारक हो मैम साहब आपको.
0: आपको भी ईद मुबारक. और ईद तो खत्म हो गई है, गुजरी हुई
1: है.
0: जी बाद में कॉल करके हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, वो फिर बासी ईद होगी, बासी ईद. अच्छा मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
1: टंग ट्विस्टर नहीं सुना, नहीं सुनाऊं?
0: सुनाऊं, बताऊं? अगर बताऊं तो बोलेंगे?
1: बोलूंगा, गा के बोलूंगा.
0: चले जबरदस्त. अच्छा आपने कहना है कि जावेद ने झूलते झुमकों की झनझनाहट झट से जगा दी.
1: जावेद ने
0: झूलते झुमकों की झनझनाहट झट से जगा दी.
1: झूलते झुमको?
0: हाँ जी,
1: झूलते झुमकों की झनझनाहट जगा दी.
0: जावेद ने झूलते झुमकों की झनझनाहट झट से जगा दी. और ये आपने ना सुरों में कहना है.
1: अच्छा.
0: हाँ जी.
1: चावे तुम्हें.

0: क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है,
1: बोल भी गया मैं।
0: चलें जबरदस्त, और कुछ कहना है?
1: मैं तो अभी सो के उठा हूँ, मैंने कहा टाइम हो गया, कॉल करके तो कॉल लगी है, सो के उठा हूँ यकीन करेंगे।
0: चले जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, और सो के उठे। अब मैं जो गाना प्ले कर रही हूँ वो सुने और एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें।
1: ओके
0: जी, अल्लाह हाफिज। गाना प्ले कर चुकी हूँ ब्यूटीफुल बाय द वन एंड ओनली राहत फतेह अली खान।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मैं हूँ आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आज का जो टंग ट्विस्टर कहा है वो सबसे ज्यादा अच्छा कहा है, हमेशा की तरह सरदर्द एंड हाफिज लखमीर एंड मोहम्मद सागर जो कि हमें ज्वाइन करते हैं और सुर वाला टंग ट्विस्टर कहके दिखाते हैं. तो इन तीनों ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है और बहुत अच्छा कहा है. तो ये तीनों आज के सेगमेंट के विनर हैं. बोलो तुम्हारी सेगमेंट के लास्ट लकी कॉलर्स भी रिसीव करेंगे 03000113.

0: लास्ट लकी कॉलर्स भी लाइन पे लेना शुरू करते हैं जी, और चेक करते हैं लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे, कहाँ से। हेलो
1: बाजी रुखसार, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं भाई?
1: बाजी अजीज सोलंकी चलाएं जो नीम प्रकाश।
0: अजीज सोलंकी भाई, इतनी देर बाद कॉल कर रहे हैं, कैसे ठीक ठाक?
1: बस गाँव वाला जाकर
0: ओके, मुझे बताएं लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: बाजी सुखी गाल इया है तो मां कोशिश जे करे निमार की पाबंदी करे पंज वक्त निमार जी पाबंदी करे निमार का सारा काम बेटी रहे।
0: चले जी जबरदस्त, थैंक यू। कुछ और कहना चाहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ एक और

0: तेजा वाली नमस्ते
1: बाग प्रोग्राम सुनते हैं
0: जी बिल्कुल
1: पहली दफा कॉल कर रहे हैं
0: रोजाना हम सुनते हैं आपका
1: कॉल पहली दफा कर रहे हैं

0: नवाजुद्दीन अब्दुल कदीर मरे सर, असलम अल्ताफ साहब,
1: ओके
0: मरो मिलता हूँ
1: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से।
1: तो डालो धमाल और बोलो
0: GAFM 88
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अरब रुपया रखने की तजवीज तैयार। स्कूल एजुकेशन खाते की तरक्याती बजट 17 अरब 82 करोड़। कॉलेज एजुकेशन खाते की 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज खाते के लिए 2 अरब 64 करोड़। बल्दियात के लिए 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखने की तजवीज तैयार। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते की 24 अरब 66 करोड़ रुपया तरक्याती बजट रखने की तजवीज तैयार कई हुई।

सिंध में बदमनी जी बाहे वधी का दह इंसानी जानी मिल का वही लारकानो भरसा औरत बिन पुटने धीर समेत कत्ल मियां साहब वे जो कार है तकरार बिन जन जो हयातियों गिर का वयो घोट के फसा पे गोठाणो गोलिन जो खाज बन जी वयो लारकानो जे मावटा थाने जे हद में मुगेरी बरादरी जी बिंदरन में पुराने तकरार था हथियार बंदन जो घर ते हमलो औरत जरीरा खातून संदर पुट जमीर रोशन ए धी सायमा मुगेरी कतल बजना जख्मी पुलिस मुझे मकतूल धुते बिरादरी जे एक जणे के मारण जो इल्जाम हो लाड़काणो में ही अलाहाबाद थाने के दमे पसंद पानो कंदर जोड़ो कतल हथियारबंद औरत फिरदोस ए संदस मुड़स जावेद कोरकाणी के कतल करे फरार थी वया मियां साहब जो बखराणी बिरादरी जी बिंदुरन में कारह तकरार था जेड़ो बजना कतल औरत जख्मी मकतूलन में अब्दुल जबार ए आगा असदुल्लाह बखराणी शामिल औरत मारवी जख्मी थी पई घोटे में जो गोठाणो नादिर सुंदराणी हथियारबंद था कतल मकतूल के वारसन जो घोटा धुरते गोठाणे के मारण जो इल्जाम कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस पारा कुछ मानुन के हिरासत में वठने की दावा ईरान हकीकत में मुआहदो करण चाहे तो जो अमेरिका आए असा सा गड रहंदड़न जे लाय सुठो साबित ही दो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवा है तो मुखालिफ सुकून सा वेहन ए पर कम कन आखिर में सब कुछ सुठो ही थिंदो ईरान कदे वेट में हथियार न ठाए सकंदो

ईरानी फौज जो अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी फजाई अड्डे के निशानो बनाने की दावा। ईरान के पासारन इनकलाब चाहे ईरान के बेटा सुरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर के हमले के जवाब में अमेरिकी फजाई अड्डे के निशानो बनाया वो। कुवैती फौज चाहे मुल्क के दुश्मन के ड्रोन हमलन के नाकाम बनाया वो है।

यूरोपीय यूनियन जी नुमाइंदा काया कलास वफद सां गॾु पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वई। परडे॒ही ऑफिस आमद ते परडे॒ही वज़ीर इसहाक डार काया कलास जो आदरबाह कयो। मुलाकात में वितरपन लागापन ऐं वापारी सहकार खे हथी डि॒यण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। काया कलास वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां बि मुलाक़ात कंदी।

0: नए माली साल जी बजट में 720 अरब रुपयनि जे नवनि मनसूबनि जी तजवीज़ आहे। सूबनि जे मुक़ाबले में वफ़ाक़ी सरकार वटि वसीलनि जी घटिताई आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त सूबनि जी तरक़ियाती बजट में बहितरी थी आहे। वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजट में घटिताई थी आहे। तरक़ियाती मनसूबा मुकमल करण जे लाइ 10,000 अरब रुपयनि जी घुर्ज आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-5569-0300-3883-6।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐ 02424601000
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ हैं जनाब यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं और इस खूबसूरत से प्रोग्राम में खूबसूरती के राज जानने के लिए आ चुके हैं। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें बनती चाहिए और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी चीज मालूम होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन तमाम तरह प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो है ना वो खूबसूरती छुपी हुई है। अगर आप भी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। भाई अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो वाइट एज का आप लोगों के लिए फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा ही आप लोगों की खूबसूरती को मजीद जो है ना वो बढ़ाएगा। आप लोगों के चेहरे पर जो दाग धब्बे निशान आते वो खत्म कर देगा और आपकी खूबसूरती को जो है ना वो चार चांद लगा देगा। उसके बाद आपके पास साबुन भी मौजूद है, अगर आप फेस वॉश नहीं लगाते तो आप वाइट एज का ब्यूटी सोप लगा सकते हैं और वाइट एज का ब्यूटी सोप भी अवेलेबल है जो कि बिल्कुल जी एलोवेरा, एवोकाडो और मिल्क से तैयार किया गया है। फुल नेचुरल अज़ा इसके अंदर एड की गई है ताकि आप लोगों की खूबसूरती सिर्फ बढ़ती रहे। उसके अलावा आप लोगों के लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है और वाइट एज ब्यूटी क्रीम उन लोगों के लिए जो नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, नाइट क्रीम लगाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है अपनी खूबसूरती को बढ़ाने का, अच्छी बात। नाइट क्रीमों से जरा आपके लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो, मिल्क और एलोवेरा से तैयार की गई है, ये तीनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो आप लोगों की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे सीन बन जाता है कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो और ज्यादा फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है। तमाम जितने भी साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन खराब लगती है वो तमाम तरह चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए जी है डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने क्रीम। ये डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने क्रीम जो है दरअसल ये एक ट्यूब है और ये ट्यूब उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए, उन लोगों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, टीनेजर्स के लिए खास करके जिनके चेहरे पर दाने काफी ज्यादा आते हैं, तो दाने अगर आपके चेहरे पर भी हैं, दानों से परेशान है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का आप इस्तेमाल कीजिए जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। आपके चेहरे की एक्ने के साथ जो है ना वो फाइट करता है बहुत अच्छे तरीके से और ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्ने खत्म हो जाते हैं बल्कि आपके चेहरे पर एक्ने मार्क्स वो खत्म हो जाते हैं। और जी उसके अलावा आपके चेहरे पर जो है ना ब्लैक पोर्ट्स हो, ओपन पोर्ट्स हो, वाइट

इरिटेट से हो, ये तमाम देर चीजें भी खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये इतना ठंडा ठंडा कूलिंग सा इफेक्ट देता है आपके चेहरे पर कि आप लगाते हैं तो अगर आपके चेहरे पर एक्ने है ना तो वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं। भाई आजमाया हुआ ये ट्यूब भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और डॉक्टर पिंपल का जो ये एंटी एक्ने ट्यूब है ना, इसे आप अपनी फेयरनेस क्रीम हो या फिर ब्यूटी क्रीम हो, नाइट क्रीम लगाना चाहते तो उसके अंदर एड करके भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फार्मूलों के चक्कर में पड़ रहे होते हैं, और फार्मूले ज्यादातर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, क्रीमें डाली जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं जिनकी वजह से वो जल्दी में आपको गोरा तो बना देते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा फिर आपके चेहरे पर मसले का जो ना वो सबब भी बन रहे होते हैं। तो आप नाइट क्रीमें बहुत ज्यादा मत लगाया करें, मिलाकर जो आप लगाते हैं ये चीजें जरा इनसे गुरेज किया करें। बस एक सिंपल सी लाइट वेटेड फार्मूले के साथ जो क्रीम तैयार की गई होती है उसका आप यूज किया करें, और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना, अगर आपके चेहरे पर रेड आपकी स्किन बन जाती है, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि अगर आप धूप में जाते हैं या फिर वैसे ही अगर आपकी जैसे गर्मी बढ़ती है तो आपके चेहरे की स्किन रेड हो जाती है, तो आप डॉक्टर पिंपल का जो ये ट्यूब है ना ये आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपकी जो नाइट क्रीम है ना वो आपकी स्किन को गोरा भी कर देगी और आपके चेहरे पर ये जो असर आता है ना, ऐसा कि भाई आपके चेहरे की स्किन रेड हो जाती है, लाल पड़ जाती है, एक्ने आ जाते हैं, एक्ने के मार्क्स नहीं जा रहे हैं, तो वो डॉक्टर पिंपल जो है ना वो अपना काम करेगा और इन तमाम तर चीज़ों को आपकी स्किन से जो ना वो दूर कर देगा। इसी के साथ साथ अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, अच्छी सी फेयरनेस क्रीम की तलाश में है, तो वाइट एज की लवली क्रीम भी आपके पास मौजूद है मेरी जान। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी क्रीम हमारे पास मौजूद है जो कि आप दिन में लगा सकें, अगर आप मेकअप नहीं लगा पाते हैं, अगर आप फेयरनेस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग ग्लोइंग रहे, तो आप वाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार की गई है। इसके अंदर 30 विटामिन कैप्सूल ऐड किए गए हैं, और जी उसके अलावा सिर्फ बात जो है ना वो यहाँ तक नहीं रुकती। 30 विटामिन्स के कैप्सूल के साथ साथ इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, तो बहुत ही मजेदार ये एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिसके अंदर विटामिन B3 है, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन D है, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स के कैप्सूल हैं जो कि रोजाना अगर आप सुबह हो या रात हो इस्तेमाल करते हैं मुनासिब मकदार में तो आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, गोरी हो जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो निशानात हो वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग लेडी हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि आपको जाना पड़ता है सुबह सुबह तैयार होकर, तो बस आप वाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर लगा लें, फिर देखें सारा दिन आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश रहती है, ग्लोइंग रहती है और प्यारी प्यारी रहती है। अगर आप अपने किसी भी जो है ना डेली लाइफ के अंदर कोई अच्छा सा सोप ऐड करना चाहते हैं तो वाइट एज का ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है, या फिर कोई अच्छा सा फेस वॉश ऐड करना चाहते हैं तो वाइट एज का फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत करने वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। तो लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए और खूबसूरती को बढ़ाते जाइए, और साथ साथ डायल करते जाइए 03 15 799 0595। ओके जनाब, जल्दी से ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया प्रोग्राम के अंदर कि आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी किसी की झूठी तारीफ करी है। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये होता है कि भाई अगर हम किसी की झूठी तारीफ करेंगे तो अगला इंसान खुश हो जाएगा, वैसे किसी का दिल तोड़ना भी बुरी बात होती है, तो इसी वजह से भी हम शायद झूठ बोल लेते हैं। तो आप मुझे आज बताइए कि क्या आपने कभी किसी की झूठी तारीफ करी है दिल रखने के लिए। बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं। फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए।

अच्छा निदा कहती है कि मेरी ओपा डॉक्टर अच्छी बन सकती है, इतने अच्छे से समझाती है ना। हाँ डॉक्टर में अच्छी बन सकती थी वैसे, पता नहीं क्यों मैं बनी नहीं। वैसे बचपन में मुझे डॉक्टर बनना पसंद नहीं था। और वैसे भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वैसे भाई। अच्छा निदा कहती है टॉपिक, हाँ हाँ मैं करती हूँ। काफी दफा मैंने झूठी तारीफ करी है, एक दफा भाभी की थी, दूसरी दफा कजिन की थी, तीसरी दफा किसकी की थी। भाई मेरी तो नहीं।

लोग जी प्रोग्राम सुन रहे थे व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और ज्यादा हसीन होते जा रहे हैं. किशोर भाई कहते हैं कि सिस मैंने आज गौर किया इस पिंक कलर वाली लड़की को, पिंक ड्रेस वाली लड़की को, वो पहले दिल दे रही है फिर हाथ से दो टुकड़े भी कर रही है. यहाँ ना वो इसलिए ताकि आप पहले से जरा जो करने रहे ये दिल जब आप लगाएंगे तो टूट भी सकता है. तो जरा ध्यान से. हजार खान जतोई भाई आपका बहुत शुक्रिया. एहसन अली अरबानी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं एहसन? हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक मुझे लोगों का तो पता नहीं लेकिन सिद्रा तुम्हारी तारीफ करता हूँ. अब पता नहीं सच्ची है या झूठी. क्या मतलब, इतना भी नहीं पता. अच्छा नजीर कोसो में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम करते हैं भाई का. हजार भाई कहते हैं टॉपिक हाँ की है, झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है. झूठी तारीफ अदी, ये सही बात है वैसे, कभी कभी वाकई करनी पड़ जाती है. और हजार भाई कहते हैं कि सब इल्म है, साकू इल्म है, दुनिया फिल्म है. आहो जी साकू भी ये इल्म है. अच्छा सनौला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक ठाक है? वास भाई कहते हैं अदी से दो जवाब कदें भी कैंची कूड़ी तारीफ ना ही गई. चलो ठीक है. अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और हैं जी आदिल कहते हैं कि तारीफ सिर्फ हम अच्छा मेरी करते हैं, झूठी भी नहीं करते, सच्ची मुच्ची वाली तारीफ करते हैं. क्या बात है. अली अकबर ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है सकरेंट से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया.

ओके जी, फलक शबीर की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय करिए, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. मोहम्मद हाशिम हमें सुन रहे हैं सोहबतपुर बलोचिस्तान से, और रिहान अली हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम रिहान. अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुर्दों को कंधा देने को सवाब समझने वाले लोग जिंदा लोगों को सहारा देना गुनाह समझते हैं. एग्जैक्टली. मुख्य करी करी लगना असा सिस्टम थोड़ा उबित हुआ है पर है करी भी चाहता सको. और उसके अलावा बुजुर्गों का साया आ चुका है भाई, आ चुका है बुजुर्ग का साया. बुजुर्गों का जो साया है ना वो होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ी जरूरी बात होती है. और उसके अलावा अदनान समी आ चुके हैं जी लिस्ट में. हिदायतुल्लाह कहते हैं दुनिया गोल है ये सुना था आज देख भी लिया, कल गोश्त बाजार से मिलता था और बर्फ फ्रिज से मिलती थी, आज गोश्त फ्रिज से मिलता है और बर्फ बाजार से मिल रही है. बिल्कुल जी, दुनिया गोल है. हजार बार डाढ़ी गर्मी है बाबा, डाढ़ी गर्मी है. चाचा खाले जुड़ी जो आ चुके हैं, हाय हेलो. अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा बिजी लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं. व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, क्या बात.

मानोला टगड़ भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। दर्दे दिल कहती है कि नहीं सिद्रा, मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, बस तुम्हारी तारीफ करती हूँ, और वो तारीफ झूठी तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। चले मान लेते हैं। चले नया गाना भी सुन लेते हैं, अच्छा लगा तो कल लगा देंगे। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो शख्स खुद महसूस करता है कि हाँ ये सच्ची तारीफ है या फिर झूठी। ये तो है वैसे, कई मरतबा हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि अगला इंसान खुद ही ये जरा कंफ्यूज हो जाता है कि इसने तारीफ करी या फिर समझ गए होंगे।

क्या बात है जनाब, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आप क्या समझे थे? अच्छा डायल कीजिए 03-1579-0595. अच्छा मकसूद मला हमें सुन रही है, मेहराब और से कहते सितरा मुस्कान अच्छा शो की तारीफ करें, मतलब ये लग रहा है मुझे बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कराची इस्लामाबाद लाहौर और प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम हाँ जी मतलब अच्छा है, अलग ही दुनिया में आप गुम हो जाते हैं जब आप मेरा शो सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा फहद डेरी सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह, वालेकुम अस्सलाम, अदा छालत है खुश आयो। ये हैं जी सलाम बाजी जुल्करनेन सनाफ जुल्फकार अली खोड़ो फ्रॉम अखिल बाजी, फोटो जरदारी का सॉन्ग तो सुनाएं, क्या बात है जी जुल्करनेन, आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, आप हमें अखिल से सुन रहे हैं। फरमाइश लगाने की फुल वाली कोशिश करेंगे, थैंक यू। यासीन गुडाड़ू हमारे साथ हैं सकरण से, अल्लाह जो शुक्र है सिद्रा अमा बुधायो की आयो, मजबूरी में करनी थी पवे तारीफ, सनम आरवी जो सॉन्ग बुधायो डेडिकेट बशीर लेगारी मन मजबूरी तमाची मथा भी अच्छी वेंदी है, चलो खैर है। और ये माजू दिवाली को मसलाम बाजी सिद्रा, क्या हाल है आपकी, आपका शुभरी नाई से मिर्पुर खास का उम्मीद अलीला शारी सलाम तुम्हारे नाइन चाचा खाले जुड़े जो अदील अबड़ो चोवन कुमार गुरबान खास के लिए अजीज सोलंगी एंड शमन का गाना सुनना चाहते हैं। ओके okay.

मुझे मेरी याद आ रही है और साथ साथ न्यूज ब्रेक भी आ रही है और यहाँ पर न्यूज ब्रेक आ चुका है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास करते हैं। आप जरा बैठे रहिएगा, आप हमारे साथ साथ मौजूद रहिए, पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए, खूबसूरत होते जाइए।

अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

सिंध में बदमीन की बाह वधी कर दह इंसानी जान गिड़का वही लाड़कानों भरसा औरत बिन पुटन थीस में कतुल मियाँ साहब वेझो कार है तकरार बिन जो हैतियों गिड़का वो घोटकी भरसा वे गोठानो गोलियन जो खाज बन वो लाड़कानों के माउटा थाने जद में मुगेरी बिरादरी की बिंदुर में पुराने तकरार हथियारबंदन जो घर से हमलो औरत जरीना खातून संदस पुट जमीर रोशन ए धीव सामा मुगेरी कतुल बजना रखमी पुलिस मूजिब पख्तूल धुर थे बिरादरी के एक जने के मारण जो इल्ज़ाम हो लाड़कानों में इलाहाबाद थाने जद में पसंद परणो कदड़ जोड़े के कतुल कर वो हथियारबंद औरत फिरदोस ए संदस मुड़स जावेद कोरकानी के कतुल कर फरार थी वह मियाँ साहब वेझो बखरानी बिरादरी की बिंदुर में तकरार था जेड़ो थो बजना कतुल औरत तखमी मकतूल में अब्दुल जबार ए आगा असदुल्ला बखरानी शामिल औरत मार भी जख्मी थी पई घोटकी वेझो गोठानो नादिर सुंदरानी हथियारबंद था कतुल मकतूल के वारसन जो घोटा धुर थे गोठाने के मारण जो इल्ज़ाम कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस पारा कुछ मानन के हिरासत में वठण की दावा ईरान हकीकत में मुआहदो करण चाहे तो जो अमेरिका ऐसा सा गरु रहंदन जे लाय सुठो साबित थिंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है त मुखालिफ सुकून सा वेहन ए पंजो कम कन आखिर में सब कुछ सुठो थिंदो ईरान कदे बेटम हथियार न ठाए सकदो ईरानी फौज दी अमेरिकी हमले जे जवाब में अमेरिकी फजा एडे के निशानो बणण जी दावा ईरान के बाजार इनकलाब ईरान के बेटा सिर्क में टेलीकम्युनिकेशन टावर के हमले के जवाब में अमेरिकी फजाई अड्डे के निशानों बनाया वो कुवैती फौज है मुल्क के दुश्मन के ड्रोन हमलन के नाकाम बनाया वो है यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कलास वफद से गड पाकिस्तान के दौरे से इस्लामाबाद पहुंची वही परदेही ऑफिस आमद से परदेही वजीर इसहाक डार काया कलास जो आदरबार कयो मुलाकात में बितरफ लागापन ए व्यापारी सहकार के हथी डण ते गालू कयो काया कलास वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कंदी

0: जेकॾहिं 28 तरमीम में सिंध खे तक़सीम करण जी जॻह अलॻि कई आहे हुनखे कंहिं बि सूरत में क़बूल करण जे लाइ तयारु न आहे। मुल्क जे भलाईअ जे लाइ, अवाम जे भलाईअ जे लाइ ऐं मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ, अवाम खे मज़बूत करण लाइ भारतीय सिंध में कयो आहे ज़रूरु गौर थी, लेकिन अञा ताईं जेको मसलो हथ में न आयो आहे जेकर हुन तक़सीम कंहिं बि सूरत ते कई आहे बर्दाश्त।
1: 28 तरमीम में सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं। मुल्क ऐं अवाम खे मज़बूत करण जे लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो। जेको आहे सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी। जेको आहे सिंध जे अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो त सिंध जा जे माण्हुनि पारां रद्द कयल पार्टी सूबे ते हुकूमत करे रही आहे, मौजूदा हुकमरान वटि अवामी मैंडेट न आहे, असां हिननि खे तस्लीम नथा कयूं। जेसि ताईं रियासत जी रिट क़ाइमु न थींदी, अमन बहाल न थींदो। सखर जी एहतसाब अदालत सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख़्श जे ज़मीन जा तफ़सील पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नैब जी दरख़्वास्त ते अदालत ॿुधणी कई। अदालत चयो त सखर ऐं घोटकी ज़िलनि जे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में मोहम्मद बख़्श जी केतिरी ज़मीन आहे, संभालींदड़ केरु आहिनि, तफ़सीली रिपोर्ट जमा कराई वञे।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और सेंड कीजिए 881 पर। और फेसबुक पेज है जनाब जी लाड़काना FM 88.8, जी लाड़काना FM 88.8 का पेज आपको इजीली मिल जाएगा, पेज को फॉलो कर लीजिए और आपको वहां पर हमारी पोस्ट जो है ना वो लाइव मिलती है व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो के नाम से, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे।

चाहो कि जी डाडो भलो गानो तमा बुधो पया और गाने से गडो गड तमा जो मैसेजेस आ मन के भी पढन हलंदा सी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो हफीज चांडी ओसा के बुधन पया हफीज आ तमा जो मोहब्बतो प्रोग्राम बुधो पया।

0: अच्छा सनावला ब्रोई कहते हैं कि अधिक टॉपिक हम किसी की तारीफ नहीं करते, आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं जी ए मोरो FM 88 से। सुने जी सुने, बहुत शुक्रिया। मोरो में मिल रहे ही नहीं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप जरा मालूमात लेकर जो है ना मुझे बताइएगा जरा। अच्छा वासा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक आया तमा की आयो अदा, और कहते हैं प्यारो प्रोग्राम सोनी सिद्रा मिठी। थैंक यू थैंक यू, इलाही सारी तारीफ करी छड़ी। अच्छा अनवर भा तव जो मोहब्बत हुआ तुम प्रोग्राम बुध पाया बाबा फरमाइशू तो मुख्य लगन हलाई आया पर मानू अलाय शो चवंदा तो सानी फरमाइशू तो हलाई ना करे मां सोचा पई तो वरी फरमाइशू बंद करी छड़िया न हलन नहीं कोई वरी दां कदो। निदा ही जेको ना प्यार जो इजहार करे पयो, कदी कदी असा ये प्यार जो इजहार कदा अगले मानू के लगन तो ही जेड़ो करे पयो। अच्छा निदा अली आपका बहुत शुक्रिया मेरी जाना आप हमारे साथ हैं। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक इस जमाने में कभी कभी झूठी तारीफ करनी पड़ती है वरना लोग समझेंगे ये पागल है। अच्छा सरदार ही सिकंदर नहीं नहीं हिदायतला नहीं देख रही
1: तो करे, बस तुझी दिल
0: अनवर भाई यो गानों मु कल ही हलायो हो तमा जेको ना कल मुझे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम तो पयो हुंदो ना वो ता बुधी सको था।

न बाबा न बाबा सड़ो न हिक ॿिए खां सड़ंदा त पोइ कमु कीअं हलंदो. रंग जेको आहे न तव्हांजो सांवरो थींदो. जेके माण्हू हिक ॿिए खां सड़ंदा आहिनि उन्हनि जो रंग सांवरो थी वेंदो अथव. पोइ तव्हां बि न सड़ो ऐं जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती ते को असर न अचे. ख़ूबसूरत रहो बाबा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, डी स्किन फेस वॉश लॻायो. अगरि नथो मिले तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर तां त पोइ तव्हां डायल कयो 03 15 799 0595.

अच्छा ये माधुरी बाजी सदरा बाबा की आवाज की क्या बात है, वॉइस वेरी नाइस है। आप कभी मेरे पर खास आई हैं? नहीं जी, मैं कभी मेरे पर खास नहीं आई हूँ। और उम्मीद अली उतरादी हमारे सारे सलाम, किशोर कुमार, आदिल हिदायतुल्ला, राजा हमीरचंद, रंजन, फरहान कोरी, प्लीज प्ले शमन। ओके जी, शमन हलायू था। मकसूद मला कहते हैं जवाब है झूठी या सच्ची तारीफ का तो पता नहीं, उससे पता जरूर चलेगा जिसकी तारीफ की जाएगी। हाँ यह भी गर्ल आए। मिरपुर खास से अब्दुल्ला महर ने कहते अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, आज कोई सॉन्ग नहीं रिक्वेस्ट करूंगा। जी जी अच्छी बात है, कल सारे लोगों के मैंने लगता है कि गाने लगा लिए थे तो बटरे नहीं आने तवा सब रेस्ट कयो। सही है, इरम कहती है अच्छा इरम क्या बात है, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। और बिल्कुल जी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लगाने से कोई मसला नहीं होगा। और ये हमारे साथ है बाजी, जब वो चाहते थे हम समझ ना पाए, जब हम चाहने लगे वो पास ना आए, आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। इमरान अली बिरोई भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं। भाई जान अब तो वही बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ है आगे साथ, बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और गोरे गोरे हो जाइए। और विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा आज झूठी सी तारीफ करना मुनाफ़की है बाजी, सॉरी हमसे ये काम नहीं होगा बाजी। हमें मुरीद अब्बास का गाना तो सुनाइए, थैंक यू। एंड आसिफ सोलंगी है, शमन सोलंगी है, मुदस्सर सोलंगी, सलीम एंड मुबशिर सोलंगी भी आपके साथ है। चलिए बहुत शुक्रिया सब भाइयों का, आप हमारे साथ हैं। कश्यप भी हमारा शो सुन रही है, कश्यप मेरी जान आपका वेलकम। जी बिल्कुल, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल कीजिए। ऑल स्किन टाइप के लिए है, सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगाते जाइए, गोरे गोरे पाले पाले बनते जाइए। और इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी products and e-skin beauty products.

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0303 5592120।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

योगी जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, तो अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों सूरतों में आप ये मुझे जरूर बता दिया करें कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लगाना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हैं, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने किसी की झूठी तारीफ करी है।

सो हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में है और बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो जानना चाहते हैं जनाब के व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन तमाम प्रोडक्ट्स में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम चीजों को जो ना वो समझने में और चीजों को इस्तेमाल करने से पहले जो ना वो कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी आप जाने पहचाने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी चीजों में डिफरेंस करना ये नहीं जानते हैं तो भाई जाने आप इन चीजों को, क्योंकि ये आप लोगों के फायदे के मुताबिक होते हैं। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि ये सारे जितने भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना ये सारे नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा हैं। और एक मजे की बात है कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो, साबुन हो, फेस वॉश हो, फेयरनेस क्रीम हो, एक्नी ट्यूब हो, बस आप अपने मसले को जो है ना वो देखेंगे कि आपको क्या और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए और नाम लेकर तलब कीजिए और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा तो डायल कीजिए 03 15 799 0595।

0: Lionware.
1: ओके जी, सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप इस्तेमाल करें, साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन लोगों के लिए जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया है या फिर नहीं, तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि डॉक्टर के नजदीक शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयार किया गया है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए।

ओगरी सकलेन अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सकलेन भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू है तुम्हारा जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा। और ये हमारे साथ हैं जी कश्यप। हेलो कश्यप शाला खुश आयो अज भला सफा नंढड़ो मैसेज कयो ते खैर ता है।

अच्छा छोक तो मैनू मैं छोकरी सिद्धरा मुस्कान मैं ओदे दिल दा जानी मैं ओदे दिल दा जानी तो अच्छा तमा फायसा अली जो गानो बुझन चाहियो था पर तां पांजो नालो तो लिखियो ही कोने को सो मबतू प्यारे भाजू वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग जंडो मरी का कुर्बान अली खास के लिए मेरे साथ मौजूद है हेलो इमरान अली बिरोई भाई के आज सिद्धरा टॉपिक है ना करें भाई हाँ भाई जान ये बंटो की जान है मैं आ रही हूँ कमेंट्स की जानिब सबर करें अच्छा सजाद अली जुमाली है सिटी नवाब शाह शो इज नाइस सॉन्ग प्ले ममताज मोलाई सोहणो भी सोहणो यू गानो वैसे काफी टाइम थियो असा कोन बुधो आ सो हलाण जी बिल्कुल कोशिश कंदासी अजु न त सुभाणे असा जरूर बुधंदासी ठीक आ अच्छा मकसूद तमाम जो गानों भी सुबाने लाइंदा सी ठीक आ और मौजूद है जी वालेकुम अस्सलाम ए बी रिंद मैं अक्सर अपनी वाइफ की झूठी तारीफ करता हूँ जब वो गुस्से में होती है तो वैसे ये तो एक लाजमी सी बात बन गई है कि अपनी बीवी की तारीफ करें वो झूठी हो या सच्ची हो तारीफ आप लाजमी कर लिया करें और ये हमारे साथ हैं बाजी हाय मस्ती मस्ती बस इतना ही मैसेज लिखा है बाजी हाय मस्ती मस्ती ऐ केड़ा तरीका है नाम भी लिख दिया करें अपना अल्ताफ खोसो जाग जानी हमारे साथ है कहते हैं प्लीज प्लीज सजाद अली याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी डेडिकेट अजरा खोसो एंड यू वेलकम करते हैं आपको चाचा

अच्छा दर्द दिल लगते हैं क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा है वक्त मिला तो सोचेंगे मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला तो सोचेंगे वक्त मिला तो सोचेंगे भाई पाकिस्तानी गाना है ना करें थोड़ी रिसर्च कर लिया करें

जादू, धूप वाला जादू. ओके हजार भाई, क्या बात है आपकी, बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. और वासिम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, हिदायतुल्ला. चलें ये गाना हम कल लगाएंगे, बस आप याद दिलाइएगा मुझे. अनवर भाई इतना जो है ना वो गुस्से में मत रहा करें, थोड़ा सा रिलैक्स कूल रहा करें, ठीक है. और नखा अलावा आदिल क्या कहते हैं, आपको भी कंबट आई है ना? नको बिल्कुल नहीं. किशोर भाई कहते हैं समझ नहीं आया तब इतना हंसी हो, अगर समझ आता तो. वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आया था, वो पढ़ा नहीं मैंने. बात ऐसी थी कि बताई नहीं जा सकती उसे. समझ आया करे. अच्छा बिलाल लोधरा हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया. आप हमें पंजाब से सुन रहे हैं. ओके जी, सुफियान अहमद हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम सुफियान, कहाँ गायब थे? उल्टा ये मुझे कह रहे हैं कि आप सदरा कहाँ गायब थे. अरे भाई मैं यही थी, आप गायब थे. अच्छा शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है. हेलो, पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया.

0: खुशबू।
1: बस बजाय
0: वो लड़की है या जादू,
2: जादू
0: वो लड़की है या जादू।
1: हाँ जी भाई जान, वो लड़की जादू हो गई है क्योंकि उसने वायरिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और उसकी खूबसूरती देखकर ये इंसान जो है ना ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या हो गया है। वो ये जरा आपको मैं बात जरा क्लियर करूंगी कि वो जो लड़की है ना वो वायरिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो आप भी वायरिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी पाली पाली हो जाए, खूबसूरत हो जाए, लोग आपकी बिल्कुल ऐसे ही तारीफ करें।

0: ओके जी, सो गाना हमने बहुत ही अच्छा वाला सुना, और उसके साथ साथ हैं जी यहाँ पर असद बलोच हमारे साथ मौजूद की थी। अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा, आप कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी आप। मैं लेट शामिल हो रहा हूँ शो में, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और शो आपकी आवाज़ की वजह से सुपर भी। आज के टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि करनी पड़ती है किसी ना किसी की झूठी तारीफ। वैसे हाँ असद, किया करे, कोई मसले की बात ही नहीं। ये छोटी सी जो खुशी है ना, वो लोगों में बांटा करे। वैसे भी आजकल लोग खुशियां कम ही बांट रहे हैं, तो तारीफ कर लिया करे। हाँ तांगे छापे लगे गानों कला कलंदू छापेला।
1: कहानियों की परी हाथना कर...
0: इसको तो खत्म होना ही था, उसको जाना था, उसको जाने थी नगमा।

0: रा। अच्छा किशोर भाई, आप सोच लें कि आपने तारीफ करनी है या नहीं। क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं जी फजीला सिंधी। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहती हैं? गुड आफ्टरनून, सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सभी लड़कियों को। टॉपिक नहीं नहीं डियर। ओए प्यारी,
1: मेरे सरा करीब हो गई हसीन रा।
0: मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरी झूठी तारीफ करते हैं। हस्बैंड सारे ऐसे होते हैं।
1: ना ही बादलों के बरसात हो गई, मैं किस तरह बताऊं
0: जो दिल में है छुपी। तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ भी नहीं,
2: कहती कुछ नहीं।
1: कहानियों की एक परी यातना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है।
0: टाइम खत्म हो गया भाई मेरे शो का, तो अब मुझे जाना पड़ेगा।
1: ये दिल खुशी से भूल के यूं गुब्बारे की तरह।
0: ओके सो वरी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में। एक बजे से लेकर तीन बजे तक आपका हमारा साथ रहता है, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा। और साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी बात कह दी हो जो आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मैं माजरत कर देती हूँ। सो मुकलानी नाही बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड take care.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: जमुई और मुस्तफा था जब शहीद भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने शिजर के आवाम ने काय आवाम के साथ दिया और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का किस्मत बदल दिया आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का किस्मत बदल दिया आपने जब भुट्टो को सहारा दिया तो आपने पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मा का कलियात दिलवा दी जब आपने आपने कायदे-ए-आम साथ दिया तो कायदे-ए-आम ने यहां के लोगों को सहारा दिया यहां के कमजोर तबका के साथ दिया कायदे-ए-आम की गिरफ्त बस्तान जब पहले आया था शिशगढ़ जब पहले आया था यहां का कुर्बत भी देखा यहां का आसमान भी देखा
0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0385-569-0300-338-5569
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर असां वट जगह जो डियारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003

ऑलराइट जनाब, और आज कोई बहुत ही डिफिकल्ट सा टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ, कोई गौर तलब जो है लम्हा फिक्री आपकी लाइफ में नहीं लाने वाली, बहुत आसान सा सवाल पूछने वाली हूँ और ये इसका आंसर आप जो है सेकंड्स में मुझे बता देंगे, ये मेरा तुक्का है आपके बारे में। ठीक है जी, आज आपने मुझे बताना है। चलिए जी, हम आपको मौका देते हैं कि आपको जो है चांद पर जाना है। ठीक है, आपको चांद पर अगर भेजा जाए तो किसे साथ ले जाना पसंद करेंगे आप? सिर्फ एक शख्स को ले जा सकते हैं। ठीक है जी, आपके जो 5-7 दोस्त जिनके आप नाम हमें बता रहे होते, इन तमाम को नहीं लेके जा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे या बंदी को, जिसको भी आप ले जाना चाहते हैं, आपने उसका नेम बताना है हमें। ठीक है जी, ये है आज का टॉपिक और इस हवाले से आपकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए आपने डायल करना है 031-3661-5688।

0: यारो दोस्त है बे फाजी फिल्मी जी जो कोई अनुप का साई याद कौन को करे
1: अच्छा
0: आ गए के समा तो बुदन के सबने सलाम ता चो तो एको बिन दोस्त याद कर देंगे न जो वर दिन जो अक्स वीडियो तो वरी वो वरी मना ही सब साल का को वरी खबर दिल मेरा क्या सोचिला
1: हां जी
0: आ किथे पे गुजारी जो को फोदिया सुबह जो आवा जो नियो हला चल जो सबन दोस्तन की डेडिकेशन है
1: चलेंगे मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैं सुनवाऊंगी आपको ब्रेक के बाद फौजिया सुमरो के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी हैं ये उनमें से वन ऑफ देम ये वाला ट्रैक है और चलें एक दो कॉल्स और ले लेते हैं नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब भाई आप जो भी हो रेडियो बंद कर लो मेहरबानी करके मैं मोबाइल पे बात कर तो रही हूँ आपसे जी अब फरमाइए कौन बात कर रहा है कौन अकलमंद निस्नर है हमारे साथ
2: अरकाना से वफा चंद
1: वेलकम कहेंगे अदा आपको क्या हाल है आपके ठीक है
2: अल्लाह का शुक्र है आप सुनाओ
1: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपको चांद पर भेजना चाह रहे हैं हम अगर आप चांद पे जाना चाहें तो किसे साथ लेके जाएंगे
2: एक को साथ लेके जाएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे
1: यहीं पे नहीं नहीं यही इम्तिहान है आपका एक नाम लेना है आपने
2: एक नाम ये तो सरासर
1: तो आप क्या 15-16 लोगों को लेके जाएंगे क्या फ्री में एक को लेके जा रहे हैं बड़ी बात है
2: एक को तो लेके जाना है लेकिन दूसरे हमारे लिए नहीं बोला
1: बस मैं समझ गई आप बड़े सियासी बंदे हैं बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया
2: नूरजहां का तो कोई सॉन्ग सुनाओ
1: चले नूरजहां का न्यूज वाली 6 वाली न्यूज के बाद ओ सॉरी 6 नहीं तो 4 वाली न्यूज के बाद नूरजहां सुनाएंगे ठीक है ठीक है ओह माय गॉड 6 बजे तो बहुत देर हो जाएगी 4 वाले न्यूज ब्रेक का कोई नूरजहां आई नाहिद अख्तर नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम यास्मीन चांद पे जाना है आपने और एक को साथ लेके जाना है अकेले नहीं भेज रहे हम आपको
3: आपने आज अच्छा टॉपिक रखा है आज तो आप सॉन्ग भी प्ले करेंगे ना चांद पे पर्दा कीजिए
1: नहीं मेरा पर्दा हो जाएगा एफएम से मैं नहीं कर सकती ये मैं वैसे ही सेल फोन पे या कंप्यूटर पे सुन सकती हूँ ऑन एयर ये प्ले किया ना तो रेडियो से मेरा हमेशा का पर्दा हो जाएगा कहीं आपको गवारा है ये
3: अभी मैं अपने भांजे को लेकर जाऊंगी अब्दुल रहमान को
1: अरे वाह क्या कहने आपके दूसरे भांजा भांजी सुन रहे हैं आपको दूसरे भांजा भांजी है इस वक्त आसपास
3: आपने क्या कहा आपने
1: मैंने कहा दूसरे भांजा भांजी है आसपास आपके
3: हैं सब बहुत है माशाल्लाह 8 दिन है उनके बच्चे सबके हैं लेकिन ये भांजा मेरे साथ में उसको जो ये छोटा था ना फिर मैं जब भी उसको अपने साथ लेकर जाया करती थी तो अभी माशाल्लाह वो बड़ा हो गया है 18 साल का आप जब भी कहीं जाती हूँ ना बहुत कम निकलती हूँ घर से लेकिन इसी के साथ जाती हूँ
1: चले अल्लाह आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखे यास्मीन हमने ब्रेक पे जाना है बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया थैंक यू
3: अल्लाह
1: ओके जी ओके जी बातों के सिलसिले को ब्रेक देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट तशहीरी वक्फे की जानिब जाना है तशहीरी वक्फे के बाद जो है हम अगेन आपको ज्वाइन करते हैं स्टे ट्यून GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हो तो आवाज भी सिंह की है अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फ्रेंड
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेटा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: bye.
1: All right, Janab, once again, welcome back all of you. Janab, mausam ki hiddat se bahut se log ho rahe honge disturb. कुछ टोट के बताती हूँ आपको, आपके बेहद काम आएंगे. अच्छा, कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में गर्मी दानों की शिकायत हो जाती है, इस प्रॉब्लम से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो इसका आसान सा सस्ता तरीन हल, एलोवेरा और मुल्तानी मिट्टी जो है इन्हें मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना है आपने, गर्मी दानों पर जो है अप्लाई करना है. ये इससे आपकी जो स्किन है उससे ठंडक भी होगी और गर्मी दाने भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन के इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे.

0: वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, शायद आपकी नजरों से भी गुजरी हो। ये वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शहर बुलंद में कचहरी रोड पर वाकई अदालत के अहाते में पेश आया। रोहिंदर नामी वकील 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर जायदाद के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने और स्टाम्प पेपर्स खरीदने के लिए अदालत पहुंचे थे। जब वो अपने साथी के साथ एडवोकेट चैम्बर्स के बाहर खड़े थे तो हालात ने अचानक ही गैर मुतवक्की मोड़ ले लिया। एक बंदर ने बैग को फाड़ दिया, नीचे करेंसी नोट फेंकने लगा।
1: कदर मुझे तुमसे प्यार है।
0: आसपास लोग जमा इस वाकये को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दरख्त से नीचे गिरने वाले नोट जो हैं वो जमा घेरना शुरू कर दिए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, वकील को पैसे वापस हासिल करने में मदद की। रकम का ज्यादातर हिस्सा वकील को वापस मिल गया, ताहम इनमें से 2,000 से 5,000 रुपए गायब थे। वाकये की जो वीडियो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई है। तो जनाब वो जो मॉन्की जिन्होंने ये इनसे बैग छीनने की जो हरकत की है, शायद वो इन्हें ये कहना चाह रहे होंगे साढ़ा हक ऐथे रख, उनको भी जो है हिस्सा चाहिए होगा उनकी जो बैग में जो रकम मौजूद थी ना उसमें से। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लाओस में इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई, जब 10 दिन पहले सोने की तलाश में निकलने वाले अफराद का ग्रुप दूर दराज वस्ती सूबे साइसो मेबोन में गार के अंदर दाखिल हुआ था। अचानक आने वाले सैलाबी रेले की वजह से गार का रास्ता बंद हो गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद गार के अंदर ही फंस के रह गए। गार से तकरीबन 984 फीट की दूरी पर 5 अफराद को जिंदा देखा गया, जबकि 2 अफराद अब भी लापता हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज भी एक शख्स को बाहिफाजत निकाला गया था। आज रेस्क्यू एहलकारों को एक और कामयाबी इस वक्त मिली, जब पानी की सतह इतनी कम होगी बाकी मानदा 4 अफराद को भी बाहिफाजत बाहर निकाला जा सकता है। वीडियो में जज्बाती मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। जब गार में फंसे अफराद बाहर निकले, उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों को गले लगा लिया। रेस्क्यू किए गए अफराद को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, ऑक्सीजन मास्क और ड्रिप्स लगाई गई, जबकि एक तिब्बी माहिर इनका मुआयना करते हुए दिखाई दिया। अलावा अजी गार के अंदर लापता होने वाले आखिरी 2 अफराद को तलाश करने की कोशिश में अब भी पानी बाहर पंप किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में पड़ोसी ममालिक थाईलैंड, इंडोनेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के माहिर गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। जनाब ये थी कुछ लेटेस्ट इन्फो जो मैंने आपसे शेयर की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल का अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में लाखों मच्छर छोड़ने का मंसूबा तैयार है। उसने अमरीकी हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, प्रोग्राम का मकसद उन मच्छरों की नस्ल को निशाना बनाना है जो बीमारियां फैलाने के जिम्मेदार है, और मंसूबे में खास तौर पर उन जगहों पर तवज्जो दी जाएगी जहां बीमारी फैलने की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, और मच्छरों को एकदम से नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बजाय इन्हें 2 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाएगा ताकि महक्कीन नतायज की निगरानी कर सकें, हासिल होने वाले नतायज की रोशनी में अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर सकें, और इन मच्छरों को इस तरह तैयार किया जाएगा ये बीमारियों को आगे फैलाने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे बीमारियों की फैलने की शरह कम होगी, मच्छरों की अफजाइश नस्ल का सिलसिला भी टूट जाएगा। कैलिफोर्निया फ्लोरिडा का इंतखाब इसलिए किया गया, दोनों रियासतों में मच्छरों की बड़ी तादाद इनसे फैलने वाली बीमारियों का एक रिकॉर्ड मौजूद है। अमरीकी हुकाम की मंजूरी के बगैर ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। रेगुलेटर से फैसला करने से पहले आया कि इसकी अवामी सेहत को नुकसान पहुंचने یا عوامی صحت کو پہنچنے والے فائدے ماحول کو ہونے والے کسی بھی خطرے سے زیادہ ہیں. مچھروں کے حفاظتی ریکارڈ ماحول پر پڑنے والے اثرات کی رپورٹس اور نگرانی کے طریقوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیں گے. اور یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب محققین مچھروں کے رویے اور بیماریوں پر قابو پانے کے طریقوں پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں. جرنل آف ایکسپیریمنٹل بایولوجی میں شائع ہونے والی حالیہ تجرباتی تحقیق سے معلوم ہوا مچھر عام طور پر استعمال ہونے والے مچھر بھگانے والے اسپرے کی خوشبو کو خوراک کے ایک ذریعے کے طور پر یاد رکھنا سیکھ سکتے ہیں. تو جناب یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے یہ ہمارے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے بھی. یہاں پر بھی جو ہے نا ڈینگی اور دیگر امراض سے بہت ہی ڈسٹربینس ہوتی ہے. آئی ہوپ یہ جو جدید تحقیق ہے اس سے ہمارے کنٹری کے لوگ بھی مستفید ہوں. سمن گوڑ سے پریم ساگر کہتے ہیں ہائی گل کیسی ہو, اور ڈاکٹر اشوک کمار مدن لال انسر. اچھا میں اپنے دوست کو لے جاؤں گا. اوکے گڈ لک, تھینک یو جناب, بہت شکریہ. اور بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ایز یوزول. یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے تشریحی وقفے کی جانب جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس, اسٹے ٹیون, جی ایف ایم 88.9 نیٹ ورک.

0: हर पहर जिंदगी की
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चूने जैसे की खिताब करने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वाहित है वफाक गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर बाबत वजारत खत्म करे। आजाद कश्मीर ए गिलगित बल्तिस्तान बाबत फैसलो इस्लामाबाद में वेठल को बाबू न पर हितां जे अवाम के करण घुर्जे। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान में चूंडन वक्त थियण घुर्जे। पीपल्स पार्टी सदाई जंग खिलाफ रही है। खतरे में जारी जंग के खात्मे वारे फील्ड मार्शल के कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआगू आयूं। जंग जल्द खत्म न थी तो सभी के वधिक माली बार बर्दाश्त करणो पवंदो। पाकिस्तान खिते की वही ताकत है। यूरोपीय यूनियन जो भाईवार है। अमेरिका ईरान विच में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान जो किरदार बेबाखाण जोगो है। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कला चयो है तो पाकिस्तान के आलमी कानून मूजिब पंजे अवाम के दिफा जो हक हासिल है। खिते की मौजूदा सूरतहाल में मसले जो हल फिजाई हमला न पर गाल नायब वजीर आज़म सादार चल यूरोपीय वफद से हिंदुस्तानी फितने के अफगानिस्तान में मौजूदगी से गाल सिक्योरिटी मामलों से भी तफसीली गाल पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से गड़ी खिते में जटादार अमन के क्याम के लिए कोशिशों जारी रखो।

करण जो इल्ज़ाम मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त बहिरी नाकाबंदीअ लबनान ते हमलनि में वाधि साबित करे थी त अमेरिका जंगबंदी ते अमल न करे रहियो आहे। ईरानी परही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त ईरान दिफ़ा जो हक़ इस्तेमालु कंदो रहंदो, हमलनि जो जवाब ॾिनो वेंदो, पारेसी मुल्क पंहिंजे सरज़मीन ईरान ते हमलनि जे लाइ इस्तेमालु थियण न ॾियनि। अमेरिकी मीडिया जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जे मुस्तफ़ी थियण जी दावा, ईरान जे पासारनि इंकलाब सदर मसूद पज़ेशकियान जी इस्तीफ़ा जी तरदीद करे छॾी। अमेरिकी मीडिया मूजिब पज़ेशकियान इख़्तियार घटिजण ते इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। हज़ारनि इंकलाब तरदीद कंदे चयो आहे त मसूद पज़ेशकियान सदारत तां मुस्तफ़ी नाहे थियो।

इंसानी जानियूं विड़काए वही लाड़काणो भरसा औरत बिन पुट ने धीव समेत कतुल मिया साहब जो कार तकरार बिन जन जो हयातियों गिड़काए वो घोटकी भरसा में गोठाणो गोदन जो खाद बढ़ वो लाड़काणो के माहौरा थाने जद में मुगेरी बिरादरी की बिंदुन में पुराने तकरार हथियारबंदन जो घर से हमलो औरत जरीना खातून संदस पुट जमीर रोशन धीव साइमा मुगेरी कतुल बजना जख्मी पुलिस मूजिब मकतूल धुर से बिरादरी के एक जड़े के मारण जो इल्जाम हो लाड़काणो में इलाहाबाद थाने जद में पसंद पलो कदड़ जोड़ो कतुल हथियारबंद औरत फिरदोस संदस मुड़स जावेद कोरकाणी के कतुल कर फरार थी वह मियाँ साहब वेझो बखाणी बिरादरी की बिंदुन में कार तकरार था छेड़ो बजना कतुल औरत जख्मी मकतूलन में अब्दुल जबार आगा असदुल्ला बखराणी शामिल औरत मार भी जख्मी थी पई घोटकी वेझो गोठाणो नादिर सुंदरानी हथियारबंदन था कतुल मकतूल के वारसन जो घोटा धुर से गोठाणे के मारण जो इल्जाम कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस पारा कुछ मानून की हिरासत में वठने की दावा।

0: جيڪڏهن 28 ترميم ۾ سنڌ کي تقسيم ڪرڻ جي ڳالهه آهي ته جيوا ان کي ڪنهن به صورت ۾ قبول ڪرڻ جي لاءِ تيار ناهي. ملڪ جي ڀلائي جي لاءِ، عوام جي ڀلائي جي لاءِ ऐं मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ, आवाम खे मज़बूत करण लाइ पाकिस्तान जी इहो हुनखे ज़रूरु गौर कंदी, लेकिन अञा ताईं जेको मसवदो हथ में न आयो आहे, इनजे करे हुन ते को तबसरो करणु क़बल अज़ वक़्तु हूंदो, लेकिन तक़सीम कंहिं बि सूरत ते जेको आहे बर्दाश्त.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर. वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-3008-5569.
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर. होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर. नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर. राब्ते जे लाइ 0320180003.

0: हर पहर जिंदगी की लहर।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।

फैल गई बात शनासाई की, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाय की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और काफी टाइम से हमने जो है परवीन शाकिर साहिबा की कोई पोइट्री अपने लिसनर्स को नहीं सुनाई थी, आज नजर के सामने से ये गजल गुजरी तो हमने सोचा आपकी समातों की नजर करते चलें।

लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं कदर के पैमाने मेयार का है पैमाना, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक नहीं बरसों से, ख्वाब आ आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। मैं ना जुगनू हो ना दिया ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं।

0: GFM.
1: गवादर ऐं कराचीअ खे इस्लामाबाद मां हलाइण चाहिनि था। इस्लामाबाद जे फैसलनि जो सदाई नुक़सान भोगियो आहे। ॿियूं जमायतूं BISP खे बि ختم करण चाहिनि थियूं। सदन सोच आहे त BISP सूबनि हवाले कयो वञे। गिलगित बल्तिस्तान जे इलाइक़े शगर में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त वफ़ाक जी बी ऐं आज़ाद कश्मीर बाबति वज़ाहत ख़तम करे। आज़ाद कश्मीर ऐं जी बी बाबति फ़ैसिलो इस्लामाबाद में वेठल को बाबू न पर हितां जे अवाम खे करणु घुर्जे। जी बी ऐं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान में चूंड वक़्तु थियणु घुर्जे। पीपुल्स पार्टी सदाई जंग ख़िलाफ़ रही आहे। खिते में जारी जंग जे ख़ात्मे वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआगू आहियूं। जंग जल्द ख़तम न थी त सभिनी खे वधीक माली बार बर्दाश्त करणो पवंदो।

वफाकी हुकूमत पारां नए माली साल जी बजट में भी सिंध के नज़रअंदाज करण जो इंकशाफ, बियनि सूबनि जी भेट में रोडनि लाइ घटि में घटि पैसा रखण जो इंकशाफ, एनुअल प्लान कोआर्डिनेशन कमेटीअ जे इजलास में शरीक सिंध जे नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत जे रवैये ते सख़्त एहतजाज। ज़रियनि जो चवण हो त राणीपुर मोरो रोड जी तामीर लाइ 47 अरब रुपियनि मां रुगो 5 अरब रुपया रखिया विया। सखर राणीपुर टंडो आदम टंडो अलिया रोड लाइ बि 150 अरब रुपियनि मां रुगो 3 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। इजलास में शरीक जाम खान शोरो चयो त वफाकी बजट में सिंध जी रोडनि खे नज़रअंदाज कयो वियो आहे। लॻे थो त बोर्ड लॻाए रोड बंदि करणा पवंदा। 13 सालनि खां रुगो पंजाब, KPK ऐं ॿियनि सूबनि ते ख़र्च कयो पियो वञे, सिंध खे नज़रअंदाज कयो पियो वञे, जंहिं करे इन मामले ते नज़रसानी कई वञे।

0: पंहिंजी वॾी ताक़त यूरोपी यूनियन जो भाईवार आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जो किरदार बि वाखण जोॻो आहे। यूरोपी यूनियन जे नुमाइंदा काया कालास चयो आहे त पाकिस्तान खे आलमी कानून मूजिबि पंहिंजी ऐं अवाम जी दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे। खिते जी मौजूदा सूरत हाल में मसइले जो हल फिज़ाई हमला न पर ॻाल्हियूं ई आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त यूरोपी वफ़द सां हिंदुस्तानी फितने जी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। सिक्योरिटी मामलनि ते बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पाकिस्तान यूरोपी यूनियन सां गॾिजी खिते में जटादार अमन जे क़याम लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमुन ॻाल्हियुनि जी कामयाबी जी दावाउनि दौरान अमरीका ऐं ईरान जा हिक ॿिए जी ठाकनि ते हमला। अमरीकी फ़ौज जी ईरानी बेट सिरक ते फ़ौजी ठाकनि ते हमला। जवाब में ईरानी फ़ौज जा कुवैत में अमरीकी अॾनि ते ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब चयो आहे त ईरान जी बेट सिरक में टेली कम्यूनिकेशन टावर ते हमले जे जवाब में अमरीकी फिज़ाई अॾे खे निशानो बणायो वियो। कुवैती फ़ौज चयो आहे त मुल्क ते दुश्मन जी ड्रोन हमलनि खे नाकाम बणायो वियो आहे। ईरान हक़ीक़त में मुआदो करणु चाहे थो जेको अमरीका ऐं असां सां गॾु रहंदड़नि लाइ सुठो साबित थींदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त मुख़ालिफ़ सकून सां वेहनि ऐं पंहिंजो कमु कनि। आख़िर में सभु कुझु सुठो ई थींदो। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार न ठाहे सघंदो। अमरीका सां ॻाल्हियूं कंदड़ ईरानी वफ़द जे सरबराह मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ जो अमरीका ते जंग बंदीअ जी भञकड़ी करण जो इल्ज़ाम। मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ चयो आहे त बहरी नाकाबंदी ऐं लबनान ते हमलनि में वाद साबित करे थी त अमरीका जंग बंदीअ ते अमल न करे रहियो आहे। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त ईरान दिफ़ा जो हक़ इस्तेमाल कंदो रहंदो, हमलनि जो जवाब ॾिनो वेंदो। पाड़ेसरी मुल्क पंहिंजी सरज़मीन ईरान ते अमरीकी मीडिया जी ईरानी सदर मसूद पशिकियान जी मुस्तफ़ी थियण जी दावा। ईरान जे पासदारान इनकलाब सदर मसूद पशिकियान जी इस्तीफ़ा जी तरदीद करे छॾी। अमरीकी मीडिया मूजिबि पशिकियान अख़्तियार घटिजण ते इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। पासदारान इनकलाब तरदीद कंदे चयो आहे त मसूद पशिकियान सदारत तां मुस्तफ़ी नाहे थियो। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजेट तयार थी वई। 12 जून ते सिंध असेंबलीअ में पेश थियण जो इम्कान। नए माली साल में गुज़िरियल माली साल वारी तरक़ियाती बजेट रखण जी तजवीज़। सूबाई ADP बजेट 520 अरब ऐं ज़िले तरक़ियाती बजेट 55 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ तयार। स्कूल एजुकेशन खाते जी तरक़ियाती बजेट 17 अरब 82 करोड़ ऐं कॉलेज एजुकेशन खाते जी 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज खाते लाइ 2 अरब 64 करोड़ ऐं मकानी खाते लाइ 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ शामिल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जी 24 अरब 68 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजेट रखण जी बि तजवीज़ तयार कई वई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 96 851

गवादर ऐं कराची खे इस्लामाबाद मां हलाइण चाहिनि था। इस्लामाबाद जे फैसलनि जो सदाई नुक़सान भोगियो आहे। ॿियूं जमायतूं बी आई एस पी खे बि ख़तम करण चाहिनि थियूं। सदन सोच आहे त बी आई एस पी सूबनि हवाले कयो वञे। गिलगित बल्तिस्तान जे इलाइक़े शकर में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त वफ़ाक जी बी ऐं आज़ाद कश्मीर बाबति वज़ारत ख़तम करे आज़ाद कश्मीर ऐं जी बी बाबति फ़ैसिलो इस्लामाबाद में वेठल को बाबू न पर हितां जे अवाम खे करणु घुर्जे। जी बी ऐं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान में चूंडू वक़्त थियणु घुर्जे। पीपुल्स पार्टी सदाई जंग ख़िलाफ़ रही आहे। खिते में जारी जंग जे ख़ात्मे लाइ वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआगू आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां नए माली साल जे बजट में बि सिंध खे नज़रअंदाज़ करण जो इंकशाफ़। ॿियनि सूबनि जे भेट में सिंध जी रोडनि लाइ घटि में घटि पैसा रखण जो इंकशाफ़। एनुअल प्लान कोआर्डिनेशन कमेटी जे इजलास में शरीक सिंध जे नुमाइंदे जो वफ़ाक़ी हुकूमत जे रवैये ते सख़्त इहतिजाज। ज़रीन जो चवणु आहे त राणीपुर मोरो रोड जी तामीर लाइ 47 अरब रुपियनि मां रुगो 5 अरब रुपया रखिया विया। सखर राणीपुर टडो आदम टडो अलिया रोड लाइ बि 150 अरब रुपियनि मां रुगो 3 अरब रुपया रखिया विया। इजलास में शरीक जाम खान शोरो चयो आहे त वफ़ाक़ी बजट में सिंध जे रोडनि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो। लॻे थो त बोर्ड लॻाए रोड बंदि करणा पवंदा। 13 सालनि खां रुगो पंजाब खैबर पख़्तूनख़्वा ऐं ॿियनि सूबनि ते ख़र्च कयो पियो वञे। सिंध खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे, जंहिं करे इन मामले ते नज़रसानी कई वञे। पाकिस्तान खिते जी वॾी ताक़त ऐं यूरोपी यूनियन जो भाईवार आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जो किरदार बि वाखाण जोॻो आहे। यूरोपी यूनियन जे नुमाइंदा काया कालास चयो आहे त पाकिस्तान खे आलमी कानूननि मूजिबि पंहिंजे ऐं अवाम जे दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे। खिते जी मौजूदा सूरतहाल में मसइले जो हल फिज़ाई हमला न पर ॻाल्हियूं ई आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो त यूरोपी वफ़द सां हिंदुस्तानी फितने जी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। सिक्योरिटी मामलनि ते बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पाकिस्तान यूरोपी यूनियन सां गॾिजी खिते में जटादार अमन जी क़याम लाइ कोशिशूं जारी रखंदो।

0: अमन ॻाल्हियुनि जी कामयाबी जी दावाउनि दौरान अमरीका ऐं ईरान जा हिक ॿिए जी थाकनि ते हमला। अमरीकी फ़ौज जी ईरानी भेट सिर्क ते फ़ौजी थाकनि ते हमला। जवाब में ईरानी फ़ौज जा कुवैत में अमरीकी अॾनि ते ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब चयो आहे त ईरान जी भेट सिर्क में टेली कम्युनिकेशन टावर ते हमले जे जवाब में अमरीकी फिज़ाई अॾे खे निशानो बणायो वियो। कुवैती फ़ौज चयो आहे त मुल्क ते दुश्मन जे ड्रोन हमलनि खे नाकाम बणायो वियो। ईरान हक़ीक़त में मुआदो करण चाहे थो जेको अमरीका ऐं असां सां गॾु रहंदड़नि लाइ सुठो साबित थींदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त मुख़ालिफ़ सकून सां वेहनि ऐं पंहिंजो कम कनि, आख़िर में सभु कुझु सुठो ई थींदो। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार न ठाहे सघंदो। अमरीका सां ॻाल्हियूं कंदड़ ईरानी वफ़द जे सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ़ जो अमरीका ते जंग बंदीअ जी भञ कड़ी करण जो इल्ज़ाम। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ़ चयो आहे त बहरी नाकाबंदी ऐं लबनान ते हमलनि में वाध साबित करे थी त अमरीका जंग बंदी ते अमल न करे रहियो आहे। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त ईरान दिफ़ा जो हक़ इस्तेमाल कंदो रहंदो, हमलनि जो जवाब ॾिनो वेंदो। पाड़ेसरी मुल्क पंहिंजी सरज़मीन ईरान ते हमलनि लाइ इस्तेमाल थियण न ॾिनो। अमरीकी मीडिया जे ईरानी सदर मसूद पशिकियान जे मुस्तफ़ी थियण जी दावा। ईरान जे पासदारान इनकलाब सदर मसूद पशिकियान जे इस्तीफ़ा जी तरदीद करे छॾी। अमरीकी मीडिया मूजिबि पशिकियान अख़्तियार घटिजण ते इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। पासदारान इनकलाब तरदीद कंदे चयो त मसूद पशिकियान सदारत तां मुस्तफ़ी नाहे थियो। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजेट तयार थी वई। 12 जून ते सिंध असेंबली में पेश करण जो इम्कान। नए माली साल में गुज़िरियल माली साल वारी तरक़ियाती बजेट रखण जी तजवीज़। सूबाई ADP बजेट 520 अरब ऐं ज़िले तरक़ियाती बजेट 55 अरब रुपया रखण।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप 2.5, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03015541456 ऐं तौकीर अहमद 03016237393।

होंडा मोटर्स थे पहले होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे
1: जेकॾहिं वफ़ाक कंगाल आहे त जीबी ऐं आज़ाद कश्मीर वरी वज़ाहत ख़तम करे जीबी जे इलाइक़े में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन रावत भुट्टो ज़रदारी चयो त ॿियूं जमायतूं बीआईएसपी खे सूबनि हवाले करणु चाहिनि थियूं। बीआईएसपी सूबनि हवाले त मां पाण कंदुसि। उमेद आहे हिन भेरे असांजी का सीट चोरी न थींदी। खिते में जारी जंग जे ख़ात्मे वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआ घुरायूं। एमक्यूएम मुर्दा सियासत खे जीआरण जी कोशिश करे रही आहे। गैस जी बि ज़िमेवारी वफ़ाक़ी हुकूमत जी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील महमूद चयो आहे त सिंध हुकूमत पाणी बहरान बाबति इरसा खे ख़त लिखी चुकी आहे। सूबे में पाणी खोट जो असर कराची ते बि पवंदो। एमक्यूएम सियासत बंद करे। कराची जे डिफेंस फेज 8 वारे इलाइक़े मां पंजाब जे ज़िले रहीमयार ख़ान जे डीपीओ इरफान समूह जे घर मां धाड़ो। जवाबदार इरफान समूह जे घर भातियुनि खे यरगमाल बणाए फुल लुटकण बाद फरार थी विया। एसएसपी साउथ मूजिब 4 हथियारबंद इरफान समूह जे घर में दाख़िल थी घर भातियुनि खे यरगमाल बणाए फुल लुटकई। कोटड़ी कबीर में जी झोरींदड़ रोड हादसो। कौमी शाहरा ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल के टक्कर 4 जणा फौत। रसूलाबाद स्टॉप साम्हूं तेज़ रफ़्तार ट्रालर मोटरसाइकिल सवार मथां चढ़ी वियो। हादसे जे नतीजे में हिक ई घर जा 4 भाती फौत थिया। फौतियुनि में मसमात सोट शहर सिकंदर शहर अली नवाज़ ऐं गुलाम रहबर शामिल।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300 3385569 0300 3385569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी

0: ट्रेन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेरे निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वो हमेशा के लिए इस मुल्क के गरीब अवाम के आवाज को दबा देंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो अलम थामी और 30 साल इस पार्टी के परचम को थाम के जिद्दोजहद करती रही, इस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज बनी। आज तक अगर पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान का कोई पहचान है तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दुनिया पहचानती है। उस वक्त कुछ अलग थे हालात, अब पाकिस्तान अलग है। उस वक्त मुझसे 9 सीटें छीनेंगे, इस दफा आपने इंश्योर करना है। मैं इमरान दीन साहब को उस असेंबली में देखना चाहता हूँ। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूँ। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया जाए, और मेरा आपसे अपील है कि तीर पे थप्पा लगा के मेरा नुमाइंदे को मुंतखब करवा के मुझे ये मदद करे ताकि मैं आपका खिदमत कर सकूँ।
2: हू गवादर ए कराची के इस्लामाबाद में हलान चाहन था। इस्लामाबाद के फैसलन जो सदाई अवाम के नुकसान थो है। बी पार्टियों गिलगित बल्तिस्तान के भी इस्लामाबाद में हलान चाहन थी। जैसे वफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर वाली वजारत खत्म करे। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शक्गर में चूंड जलसे के खिताब कर पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो बी जमायतों बी आई एस पी के सूबन हवाले कर चाहन थी। बी आई एस पी सूबन हवाले थो तो खत्म थी वो। आजाद कश्मीर ए गिलगित बल्तिस्तान बाबत फैसला इस्लामाबाद जो बाबू न पर इतान के अवाम के करण घुर्जे। कदें भी कंके सिलेक्ट कर सदाई शफाफ चूंड जो मुतालबो किया है। अवां के फॉर्म 45 पान सा गड खड़ी वापस वनो है। फॉर्म 47 जो बंदोबस्त मां पान कंदुस। उम्मीद है तो इन भेरे असाजी का सीट चोरी न थी। खिते में जारी जंग के खात्मे वाले फील्ड मार्शल की कोशिश की कामयाबी लाए दुआगू आयु। जंग जल्द खत्म न थी तो सभी के वधिक माली बार बर्दाश्त करो पवो।

0: अमरीका ऐं ईरान विच में थियल मिज़ाइल हमलनि बाद आलमी मार्केट में हिकु भेरो ॿीहर तेल महांगो थियण लॻो। WTI जी फी बैरल अघ में 7 डॉलर ताईं वाध 94.2 डॉलर बाद फी बैरल थी वियो। इमाराती तेल बि 6 डॉलर महांगो थी वियो। बरतानवी कचो तेल 97.6 डॉलर फी बैरल थी वियो। यूरोपी यूनियन जे वफद जी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सां मुलाक़ात। बेतरफ़न लाॻापन ऐं इलाक़ाई सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल। स्ट्रेटजिक डायलॉग में गॾियल सहकार खे हथी ॾियण वारे आज़म जो वर्जाओ। वज़ीर आज़म पारां ख़िते में जटादार अमन जी क़याम लाइ सफारतकारीअ ते ज़ोर भरियो वियो। परॾेही तर्जुमान चयो त मुलाक़ातुनि दौरान वापार, सीड़पकारी ऐं सिक्योरिटी सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। यूरोपी यूनियन ऐं पाकिस्तान हिक ॿिए सां सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजेट तयार थी वई। 12 जून ते सिंध असेंबली में पेश थियण जो इम्कान। नए माली साल में गुज़िरियल माली साल वारी तरक़ियाती बजेट रखण जी तजवीज़। सूबाई ADP बजेट 520 अरब ऐं ज़िले तरक़ियाती बजेट 55 अरब रुपया रखण जी बि तजवीज़ तयार। स्कूल एजुकेशन खाते जी तरक़ियाती बजेट 17 अरब 82 करोड़ ऐं कॉलेज एजुकेशन खाते जी 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज खाते लाइ 2 अरब 64 करोड़ ऐं मकानी खाते लाइ 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ तयार। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जी 24 अरब 68 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजेट रखण जी बि तजवीज़ तयार कई वई।
1: रही थी GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: 0306-16-23-793.
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04372
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

और कर देगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।